सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतशतयोजन शरदिवियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पण बडवाकृत बड बड